0: আদি আল্লাহ একলাঙ্গে হেদেবি তাকেতেন হিয়া তিয়া মিহু নাটকা লেবি আদি তিয়া মিহু রক্কা তেরকন লিবগতমা বদে তিবে নে তন্তং ফারুবদ থকুন তিয়া মিহু নাটকা লেবি আদি ফিনি হুনু কামু তিয়া মিহু রক্কা তেরকুদ্দে ফেরান থাকায় হাঙ্গুরা ম্যাগেন রক্কা তেরকামু তিয়া মিহু রক্কা তেরকুদ্দে ফেরান্ত ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ದಿವ್ವಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮೈ ಫುರಿಹಮ ಖೋ ದಿವ್ವನಿ ಎಫದೈನ್ನಿ ಎಯಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕಿಯಮಂಬು ಮಟ್ಟಕೈ
1: ಫಇನ್ ತವಲ್ಲೌ ಫಇನ್ನಮಾ ಅಲೈಕಲ್ ಬಲಾಗುಲ್ ಮುಬೀನ್
0: ಫಹೆ ಏವ್ರಂ ಫುರಗಸ್ ದೀಫಿನಮ ಫಹೆ ಖಲೇಗ ಫಾನ್ಗ ಮಚ್ಚಂ ಒಕ್ಕಂ ಕಾಶವರಿ ಬಯಾಂ ವಿಗಂವಾ ಇವ್ವೆವ್ಮೆ

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকং এহি তরিবে ওয়াগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদকান দে ফাদান
1: ಮಿ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಒಣತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮೆದುಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಗುದುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ತುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআফ হবে, লা তাআতা লিআহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহ উরা দেবে এভেস কামেগা মিহাকা কিয়া মামবু মেনুবে হামাকাশওয়ারুং কিয়া মামবু বানি হেও কামকামুগে।
1: ಅಸ್ಸಮಂತಿಯ ಗಿಂತವಣಿ ದ್ವಿಹಿರಾಜೇಗಡು ಹ್ಯಾಗಡಿ 32 ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಭಂಗಿಯ ಭಂಗಿತುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: दुनिया के हतरु पितुं
1: राज्य के उतुरा देखुनुं
0: खबरा मालूमात
1: उठ में नेति सविस कडीरु
0: दिवही राज्य के आडू
1: इंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: ಗಡಿನ್ ರೇಗಂಡು ಅಶೆಜಹಿ ಅಸ್ಸೌಮಂತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿಹಿರಾಜ್ಯ ಗಡು

0: குளிபரத்த ஹோகே டிக்டாக் வீடியோ சேலஞ்ச்
1: திரஷுக குளே ஈத் குளிபரத்த ஹோகே வீடியோ தா அழுகன் மென்னா ஹிஸ்ஸா குரவ்வா
0: ए मिनिटा तिरी सिकुंता देमेदुगे कुरु वीडियो ए दिवे राज्य गडुगे टेलीग्राम नंबर हते तिनंग एके हायनोय फाहिनोय का फोनवा
1: एहुन तेरिम फोनवा वीडियो ता दिवे राज्य गडुगे टिकटॉक पेज अपलोड कुरान
0: एम में गिना व्यूज दिबे वीडियो इन हुशेडी फरातका एंगास रुफिया के फ्यासा के नाम
2: नसीबरिया एयरलाइन कुरानी मे 29 वन दुहुगेरे दिवे राज्य के आडुगे टिकटॉक लाइव के तिरें
3: ईद कुलवरतोगे टिकटॉक वीडियो चैलेंज एंहा 17.49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 98 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमेकनी दिवे राज्य गडू

0: मेरे प्रोग्राम घर में ना कि बैर बड़ा इन्होंने अशे हसन मोसा फिक्र है तो डॉक्टर अली जाहिर बिन सईद गासिम तिबे फोन गुड़वा नंबर की तिने तिने हतरे सुमें हाय सुमें हाय एक तो टिकटॉक में दरको तिबे फोन सवाल कर बेन आदि एक तो पीएसएम ए बड़ा है तिबे फोन सवाल कर बे तो मैं हमें कोड़े रुकल तरह तिबे फोन बदल कोल दान इंतजार कर बात
1: सीधा मगर
2: Munifuhi filovadi, malumatke khazana musalikode, emme itu bar kurve baveriya.
3: Dihirajjege adu.
2: Engha satarustek 49 kHz medium wave, 89 MHz FM band.

0: प्रोग्राम का एक बदलूम के उम्मीद गम यहाँ सब प्रोग्राम में माला फारन वकीलान और उम्मीद करने ते बेफर नाम में रे प्रोग्राम गणेश ते मालूम आता के बरा काम दिया प्रोग्राम में मालूम आता के खास तो अड़ोसन ते बेफर नाम में मम फकुरान के उम्मीद में सब वकीलान और में मेरे प्रोग्राम का और में हम तेरे के स्वागत का जवाब दे मन तक बड़ा देव कमेंट का डॉक्टर अली जाहिर बिन सैयद कासिम आदत शेख हसन मुसफिक रे बेफर ने सर बहुत शुक्र दान आगे तो आज मेरे प्रोग्राम गने और ने प्रोड्यूसर की फातिमा वहीदा और ने ऑपरेटर की सुदा एम में बेफर ने बरा उफावरी बाजर रेखा एकदम इराक रे अन्न हफ्ता ತೆವೆ ಫನ ಬದಲು ಉಮ್ಮೀದ್ ಗಮ್ಯ ಹೈ ಸಾಮ್ ಪ್ರವಾನಿ ಮಾದಾ ವಕಿವದಾನ ಹುರಿ ಅಬ್ಬೆ ಹುನ ವರ ಉಫಾರಿಕ ಮಾ ಬಾಜರಿಕ ಮಾ ಅಮಾನ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್.
1: ಸೀದಾ ಮಗು
2: ಮುನಿಫುಹಿ ಫಿಲ್ವಾದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನಾ ಮುಸ್ಸಲಿಕ್ಕೋದೆ ಎಮ್ಮೆ ಇತು ಬಾರ್ಕುರವೆ ಬ್ಯಾವರಿಯ
3: ದಿಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನೋಯ್ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡಿಹ ನೋಯ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.